0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्टगेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।
3: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनों विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक, ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालों तो साइनेज लीडर्स। अपने बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300151616 quicksignage.com.au।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: स्मिथ्स लेन बाय मोवैक विच अपने भविष्य की शुरुआत करो। हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स दे सीमित समय लई मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स दे हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा लै रहे बिल्डर्स वल्लों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकदा है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नूं खत्म है। अजे ए मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नूं खत्म है।
3: ता किथे वज गई तेरी गड्डी?
4: गड्डी ता ठीक होजू पर इंश्योरेंस वालियां नूं लीगल वालियां नूं इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें?
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।

0: साक्षरता लागू।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।
4: सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
3: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
6: टेंशन टेंशन निरी टेंशन।
7: की होया?
6: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
7: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
6: या 90-77-97-33
7: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
6: याद रखो 9077-9733।
7: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
6: हर कदम तुहाडे नाल।

राग खिरवानी में गजल कंपोज हुई है और आप मेहरबान हौसला अफजा दोस्तों की वजह है, भाइयों की भी काफी मशहूर हुई है, पॉपुलर हुई है। ये अहमद फराज की गजल है। शोला था जल बुझा, हवाएं मुझे न दूं,

0: आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पाड़े घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
1: टेंशन मेरी टेंशन
2: की होया,
1: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-93
2: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733
2: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तुहाडे नाल।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ आस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपने बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-151616, quicksignage.com.au।
3: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
3: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
5: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
6: हाँ जी रेडियो।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2 Fold Lending।

0: ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ ਹਾਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟ 1 19-25 ਸੋਮਾਟਨ ਰੋਡ ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ ਕਾਲ 03908-6655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au
1: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan, kithe bhi ja sakti hai.
2: Attention, please. Dil kehta hai, kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo, Hi-Fi Travel Stay, your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo. 1300-533-311 te. Ya online book karo. hifitravels.com.au te.
0: Mera desh Incredible India. Trugnina vich apne har pain pranu unade desh da swad ate masale ethe de reha hai. Tusi ethe Indian masale, dalan, grocery da har saman. Wajib rate te leh sakde ho. Pao cosmetic di har item vi. Nale kar vich hove koi function ya tyohar. Mithai di ethe milegi tohanu वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी ले नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ पारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
3: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया जी जे स्टोन मेसन पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton.
4: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं, डॉक्टर कोल जाने हो। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, delay in law is damage in life. Family issue, property दा मसला, कोई immigration दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाड़े ले कर देने, Bansal Lawyers. तो हाड़ा परोसा, साड़ा तजरबा ते जित अपनी. Call 422-905-860 और visit bansallawyers.com.au
5: सोना चाहिदा
6: भरोसा चाहिदा
5: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042

0: अनकरंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 थे।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाओ कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो दियो मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
4: हां जी,

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan, kithe bhi ja sakti hai.
0: Attention, please. Dil kehta hai, kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo, Hi-Fi Travel se. Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo. 1300-533-311 te. Ya online book karo. hifitravels.com.au te.
3: Vyah, khushi ya kisi bhi khas mauke liye jewelry honi chahiye hai khas. Tunna Jewelers leke aaye ne latest gold, diamond, bullion, silver te bridal collection. Har style te har occasion liye. Genuine jewelry, genuine pricing te vadhiya customer service de naal. Gold jewelry te fast loan facility bhi available. Visit karo 5/150 Palmer's Road, Truganina ate 347 Lonsdale Street, Dandenong. Tunna Jewelers, parose di nishani.

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओह वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: की तुसी एक पैग लई ना करोगे जां फिर ए कहना पसंद करोगे नहीं मैं अपना लाइसेंस गुआ दिता है मैं असल च कोई शराबी नहीं हाँ साढ़े काम ते एक जशन सी अते मैनू लग्या के मैं पीन
0: 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: की तुसी एक पैग लई ना करोगे जां फिर ए कहना पसंद करोगे नहीं मैं अपना लाइसेंस गुआ दिता है मैं असल च कोई शराबी नहीं हाँ साढ़े काम ते एक जशन सी अते मैनू लग्या के मैं पीन लई ना नहीं कर सकदा मैं सोचिया कि मैं सीमा दे हेठा पीती है पर 0.05 सीमा तो वध पी के गड्डी चलाउंदा फड़िया गया हुण मैं अपने बच्चियां नू स्कूल नहीं छड़ सकदा मैनू अपनी माँ नू दसना पिया कि मैं हुण उसनू डॉक्टरां कोल नहीं लैके जा सकदा मेरे लिए मेरे ते निर्भर लोकां नू ना कहना सब तो बुरी सजा है काश कि मैं इहदी बजाए पैग नू ना कह दिंदा जिम्मेवारी लो जे तुसी पीती है तां गड्डी ना चलाओ TAC वल्लों एक सुनेहा
3: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
4: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए किथों?
4: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
2: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 दे।

0: किचन का स्टाइल डल लग दा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, फाटे करनू बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन। बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
2: हाँ जी रेडियो।

रेडियो हांजी 1674 एम देते तुहाडा सारयां दा स्वागत जी प्रोग्राम इनसाइट रिपोर्ट लैके होए आ हाजर। पिछले दिनां दे विच एक शो इनसाइट रिपोर्ट दा एक एपीसोड तुहाडे तक लियांदा सी और ओह USSR दे बनन ते फिर टुटन दी एक कहानी सी और इस दरमियान तुहानू दस्या सी कि लगभग चार डेकेड्स चार दहाके अमरीका ते सोवियत संघ दे विच एक कोल्ड वार रहिंदी है। कोल्ड वार दे विच कोई हथियारां दा इस्तेमाल नहीं हुंदा हैगा पर इस दरमियान जिहड़ा भी इस्तेमाल होया चाहे वह पुलाड़ दे विच एक दूसरे तो अगे निकलंदा सी चाहे वह हथियार बनाउण दे मामले च एक दूसरे तो अगे निकलंदा सी चाहे धरती दे किसे हिस्से दे उत्ते कब्जा लैण दे मामले च एक दूसरे तो अगे निकलंदा सी। उस कोल्ड वार दे नतीजे चंगे नहीं होए, USSR टुटिया, रूस टुटिया। ये रूस करके चंगा नहीं होया इस करके नहीं कह रहा मैं, बल्कि कुल मनुखता करके यह चंगा नहीं होया, क्योंकि जदों भी जिमें रिपल इफेक्ट कहने होंगे ना अंग्रेजी च, जदों कोई घटना घटती है तो उहदे आफ्टर इफेक्ट्स भी होंगे ने। हुण USSR टुटना सी तो उहदे आफ्टर इफेक्ट यह होए कि वह जिहड़ी एक सुलग रही सी जंग यूक्रेन ते रूस, क्योंकि यूक्रेन किस टाइम के उत्ते USSR दे विच रूस का ही हिस्सा सी, रूस की ही एक यूनियन का हिस्सा सी, सोवियत यूनियन का। तो उस तो बाद हुण ओह देखो जंग चली और जंग दे हालात यह होए कि दुनिया भर दे विच उस दे असर देखण नूं मिले, तेल गैस महंगा होया, मिडल ईस्ट दे विच जिहड़ी जंग चली उहदे नाल तां इन्ना कु महंगा हो गया कि हाथ ही नहीं लग रहा। खैर यह जिहड़ा सीगा इस करके क्योंकि कोल्ड वार सी, दसना मैं इस करके चाहुंदा सी इह, हालांकि अज दा टॉपिक वह बिल्कुल नहीं हैगा। अज दा टॉपिक है AI आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। मैं सिर्फ AI इस करके कह रहा हैं क्योंकि ये अगे पिछे बहुत सारिया घटनावां ने जिन्हां दा जिक्र करना है। एक तो जिहड़े पिछे जे AI एजेंट्स आप ही कंट्रोल लैन लग पे सी उहदा तुहानू दसना वह किड्डी खतरनाक चीज़ हैगी। दूजा हुण एक दावा यह भी आ रहा है कि इंसान भी खत्म हो जाएंगे AI दे चलदियां। एंथ्रोपिक दियां कुछ गल्लां सामने आईयां हैगियां ने, एंथ्रोपिक दे जिहड़े चीफ हैगे ने डोरियो अमोडेई, उन्हां दियां कुछ बयानबाजियां सामने आईयां ने। तो उन्होंने एक गल यह भी कही हैगी है कि चाइना इस रेस दे विच अमेरिका तो अगे निकल जाएगा। चाइना ने इहदे ते प्रतिक्रम दित्ते, सवेर वेले तुहाडे नाल न्यूज़ भी सांझियां कीतियां। पर चाइना नू अमेरिका थ्रैट मान रहा है और चाइना अमेरिका नू थ्रैट मान रहा है, ये लगभग हालात ओहो जिहे ने कि एक दूसरे तो दोवें अगे निकल रहे ने। तो यह भी एक किस्म का कोल्ड वार वर्गा ही माहौल इस वक्त दुनिया च बनया होया। जदों कोल्ड वार अमेरिका ते सोवियत संघ दे विच चल रही सी उदों पुलाड़ दे विच जाण दा एक जनून पैदा हो गया सी दोहां देशां दे विच। तुहानूं दस्सिया सी कि पहला मनुख जिहड़ा उह रूस ने भेजिया, फिर उस तों बाद पहला मनुख चन्न दे उत्ते जिहड़ा उह अमरीका ने भेजिया। इस तरीके दे नाल उह एक जंग जिहड़ी सीगी उह बहुत भयानक रूप लै गई सी, हथियारां दी जंग नहीं सी, कोल्ड वार। ठीक उही कोल्ड वार जिहड़ी हैगी है ये AI मसले नूं लै के हुण अमरीका ते चाइना दे दरमियान चल रही है। पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स जिहड़ी है आने वाले टाइम दे विच पूरे वर्ल्ड की इकोनोमी नूं भी ये प्रभावित कर दूगी, मार्क माई वर्ड्स। वजह बहुत सारिया ने और कोल्ड वार किस तरीके दे नाल चल रही उहनूं भी जे तुसीं समझना होवे अज दे तरीक दे विच इनवैसटमेंट कित्थे हो रही है, सैमी कंडक्टर चिप्स कित्थे बन रही ने और किहड़ी कैटेगरी दे विच, चाहे पेटेंट ने, चाहे मिलट्री AI है, चाहे AI टैलेंट ने, हर कैटेगरी दे विच अमेरिका चाइना एक दूसरे दे नाल भिड़न लगे हुए ने। निवेश की जे गल करिए प्राइवेट AI इनवैसटमेंट अमेरिका च सब तो ज़्यादा है दुनिया दे विच अज दी तरीक च, कोई शक नहीं हैगा इहदे च। OpenAI, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एंथ्रोपिक, ये सारियां कंपनियां अरबां खरबां डॉलर AI दे बुनियादी ढांचे दे उत्ते, AI दा जिहड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।
0: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया
2: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-97-33
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट।
2: हर कदम तो आड़े नाल। हाँ जी हाँ।

0: attention, ladies and gentlemen. This is your captain. 30 flights, Melbourne to India या Pakistan, Sydney to India या Pakistan कितने भी जा सकती है.
1: Attention please. दिल कहता है कर जाना है. Flight search करके थक गए. Switch करो Hi-Fi Travel से. Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book करनी है? आज ही call करो 1300-533-311 से या online book करो hifitravels.com.au से.
2: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं, डॉक्टर कोल जाने हो. फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, delay in law is damage in life. फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने. बंसल लॉयर्स, तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी. कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au. सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा. चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी. पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत. कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते. दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट, पॉइंट कुक. कॉल 0493-536-042. बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है. सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने. ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस. अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा. आज ही विजिट करो sebipartners.au. सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स.
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई. एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने.
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा.
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au.
6: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड़ सी. क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती. ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया. विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स. अपने बिजनेस नू चमकाओ. कॉल 1300-1516-16 quicksignage.com.au.

0: लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
2: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग।
3: 8 Grace Way, Ravenhall।

होगा, मुझे छोड़ गया तो क्या हुआ, आदत से मजबूर होगा, अल्लाह कसम यकीन है मर जाओगे, जो हमारे साथ किया आपके साथ भी जरूर होगा, आपके साथ भी जरूर होगा।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
2: की होया
1: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तुहाडे नाल।
0: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।

0: ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी। रेडियो
1: हांजी। हांजी हांजी।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।
2: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au।
3: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
4: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
3: फिर लवाइए कित्थों?
4: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
3: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
5: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2 Fold Landing।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: की तुसी एक पैग लई ना करोगे या फिर ए कहना पसंद करोगे नहीं मैं अपना लाइसेंस गुआ दिता है मैं असल च कोई शराबी नहीं हाँ साढ़े काम ते एक जशन सी अते मैनू लग्या कि मैं पीन लई ना नहीं कर सकदा मैं सोचिया कि मैं सीमा दे हेठा पीती है पर 0.05 सीमा तो वध पी के गड्डी चलाउंदा फड़िया गया हुण मैं अपने बच्चियां नू स्कूल नहीं छड़ सकदा मैनू अपनी माँ नू दसना पिया कि मैं हुण उसनू डॉक्टरां कोल नहीं लैके जा सकदा मेरे लिए मेरे ते निर्भर लोकां नू ना कहना सब तो बुरी सजा है काश कि मैं इहदी बजाए पैग नू ना कह दिंदा जिम्मेवारी लो जे तुसीं पीती है तां गड्डी ना चलाओ TAC वल्लों एक सुनेहा।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
3: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिन विच पूरी कर दिती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 साल तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au।
4: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
5: हाँ जी रेडियो

0: Joker.
1: ब्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
2: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
4: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
5: हाँ जी हाँ।

रेडियो हांजी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत जी। प्रोग्राम इनसाइट रिपोर्ट लैके होए आ हाजर। पिछले दिनां दे विच एक शो इनसाइट रिपोर्ट दा एक एपीसोड तुहाडे तक लियांदा सी और ओह USSR दे बनन ते फिर टुटन दी इक कहानी सी। और इस दरमियान तुहानूं दस्या सी कि लगभग चार डेकेड्स चार दहाके अमरीका ते सोवियत संघ दे विच इक कोल्ड वार रहिंदी है। कोल्ड वार दे विच कोई हथियारां दा इस्तेमाल नहीं हुंदा हैगा, पर इस दरमियान जिहड़ा भी इस्तेमाल होया, चाहे वह पुलाड़ दे विच एक दूसरे तो अगे निकलंदा सी, चाहे वह हथियार बनाने दे मामले च एक दूसरे तो अगे निकलंदा सी, चाहे धरती दे किसे हिस्से दे उत्ते कब्जा लैण दे मामले च एक दूसरे तो अगे निकलंदा सी, उस कोल्ड वार दे नतीजे चंगे नहीं होए। USSR टुटिया, रूस टुटिया। यह रूस करके चंगा नहीं होया इस करके नहीं कह रहा मैं, बल्कि कुल मनुखता करके ये चंगा नहीं होया, क्योंकि जदों भी जिमें रिपल इफेक्ट कहने होंगे ना अंग्रेजी च, जदों कोई घटना घटती है तो उहदे आफ्टर इफेक्ट्स भी होंगे ने। हुण USSR टुटना सी तो उहदे आफ्टर इफेक्ट ये होए कि वह जिहड़ी एक सुलग रही सीगी जंग यूक्रेन ते रूस, क्योंकि यूक्रेन किसे टाइम दे उत्ते USSR दे विच रूस का ही हिस्सा सी, रूस की ही एक यूनियन का हिस्सा सीगा, उस सोवियत यूनियन का। तो उस तो बाद हुण ओह देखो जंग चली और जंग दे हालात ये हुए कि दुनिया भर दे विच उस दे असर देखन नूं मिले, तेल गैस महंगा होया, मिडल ईस्ट दे विच जिहड़ी जंग चली उहदे नाल तां इन्ना क महंगा हो गया कि हाथ ही नहीं लग रहा। खैर ये जिहड़ा सीगा इस करके क्योंकि कोल्ड वार सी, दसना मैं इस करके चाहता सी इह, हालांकि अज का टॉपिक वो बिल्कुल नहीं हैगा। अज का टॉपिक है AI आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। मैं सिर्फ AI इस करके कह रहे हैं क्योंकि ये अगे पिछे बहुत सारिया घटनावां ने जिन्हां दा जिक्र करना है। एक तो जिहड़े पिछे जे AI एजेंट्स आप ही कंट्रोल लैन लग पे सी, उहदा तुहानूं दसना वह किड्डी खतरनाक चीज़ हैगी। दूजा हुण एक दावा यह भी आ रहा है कि इंसान भी खत्म हो जाएंगे AI दे चलदे। एंथ्रोपिक दियां कुछ गल्लां सामने आई हैं, हैगियां ने एंथ्रोपिक दे जिहड़े चीफ हैगे ने डोरियो अमोडई, उन्हां दियां कुछ बयानबाजियां सामने आई ने। तो उन्होंने एक गल ये भी कही हैगी है कि चाइना इस रेस दे विच अमेरिका तो अगे निकल जाएगा। चाइना ने इहदे ते प्रतिक्रम दित्ते, सवेर वेले तुहाडे नाल न्यूज़ भी सांझियां कीतियां। पर चाइना नूं अमेरिका थ्रैट मान रहा है और चाइना अमेरिका नूं थ्रैट मान रहा है। ये लगभग हालात ओह जे ही ने कि एक दूसरे तो दोवें अगे निकल रहे ने। तो यह भी एक किस्म का कोल्ड वार वर्गा ही माहौल इस वक्त दुनिया च बनया होया। जदों कोल्ड वार अमेरिका ते सोवियत संघ दे विच चल रही सी उदों पुलाड़ दे विच जाण दा एक जनून पैदा हो गया सी दोहां देशां दे विच। तुहानूं दस्सिया सी कि पहला मनुख जिहड़ा उह रूस ने भेजिया, फिर उस तो बाद पहला मनुख चन्न दे उत्ते जिहड़ा उह अमरीका ने भेजिया। इस तरीके दे नाल उह एक जंग जिहड़ी सीगी उह बहुत भयानक रूप लै गई सी, हथियारां दी जंग नहीं सी, कोल्ड वार। ठीक उही कोल्ड वार जिहड़ी हैगी है ये AI मसले नूं लैके हुण अमरीका ते चाइना दे दरमियान चल रही है। पूरी वर्ल्ड दी पॉलिटिक्स जिहड़ी है आउण वाले टाइम दे विच पूरे वर्ल्ड दी इकोनोमी नूं भी ये प्रभावित कर दूगी। मार्क माई वर्ड्स, वजह बहुत सारियां ने। और कोल्ड वार किस तरीके दे नाल चल रही उहनूं भी जे तुसीं समझना होवे, अज दे तरीक दे विच इन्वेस्टमेंट कित्थे हो रही है, सैमी कंडक्टर चिप्स कित्थे बन रही ने और किहड़ी कैटेगरी दे विच, चाहे पेटेंट ने, चाहे मिलट्री AI है, चाहे AI टैलेंट ने, हर कैटेगरी दे विच अमेरिका चाइना एक दूसरे दे नाल भिड़न लगे हुए ने। निवेश दी जे गल करिए तां प्राइवेट AI इन्वेस्टमेंट अमेरिका च सब तो ज़्यादा है दुनिया दे विच अज दी तरीक च, कोई शक नहीं हैगा। ये OpenAI, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एंथ्रोपिक, ये सारिया कंपनियां अरबां खरबां डॉलर AI दे बुनियादी ढांचे दे उत्ते, AI दा जिहड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उहनूं खड़ा करन दे उत्ते लगा रही हैगियां ने, रिसर्च दे विच लगा रही ने। चाइना च भी हो रही है। चाइना ने इनफैक्ट टारगेट भी मिथया होया है कि 2030 तक दुनिया की सब तो वड्डी AI पावर चाइना ने बनना है। और इहदे करके उत्थे सरकारी फंडिंग की कोई घाट नहीं हैगी और डेटा एक्सेस के मामले दे विच चाइना बहरहाल अमरीका तो थोड़ा जा मजबूत नज़र आता है। पर जदों सैमी कंडक्टर माइक्रोचिप की गल आती है वह भी एक वार ही है,
ਮਾਈਕਰੋਚਿਪ ਵਾਰ ਵੀ ਆ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਏ ਆਈ ਚਿਪਸ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਡੀਆ H100 ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕਵੈਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਤਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਵਾਬ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਿਕ SMIC ਜਾਂ ਹਿਊਵਾਏ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ AI ਚਿਪਸ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟਿਵ AI ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਡਲ ਜਿਵੇਂ GPT, ChatGPT ਦਾ GPT-4 ਹੈ, ਕਲਾਡ ਦਾ ਜਾਂ ਜੈਮੀਨਾਈ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਡੀਪਸੀਕ, ਕੁਈਨ, ਐਰਨੀ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ AI ਪੇਟੈਂਟਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ AI ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਈਨਾ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ। ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਨਮਸ ਡਰੋਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਡਿਫੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਟੋਨਮਸ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਡਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਸਵਾਮਸ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਈਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਡਰੋਨਸ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ AI ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਮਾਡਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ AI ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਏ ਹੋਵੋ,

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 04 91 99 555। शर्ता लागू।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: व्याह खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास तुन्ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट डैंडीनोंग तुन्ना ज्वेलर्स परोसे दी निशानी
3: हां

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan, kithe bhi ja sakdi hai.
3: Attention, please. Dil kehta hai, kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo, Hi-Fi Travel Stay, your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo 1300-533-311 te. Ya online book karo hi-fitravels.com.au te.

दूर कीती है। सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करने वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलती है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम। फ्री लीगल एडवाइस लाई कॉल करो 0383857।

0: ब्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए नी लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।
1: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपनी हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनु भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

सुन रहे हो डीजे ब्लास्ट सैटरडे स्पेशल विद योर ओन आरजे पुनीत। एंजॉय करते रहो तो सुनते रहो डीजे ब्लास्ट रेडियो। हाँ जी, ते चकवें गीत सैटरडे नाइट नू होर भी चकवी बनाने वास्ते डीजे ब्लास्ट विद आरजे पुनीत।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील स्किल्स असेसमेंट दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
2: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
2: हर कदम तुहाडे नाल।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

तेरी आंखों में डूब जाता है। नई गजल इसके पोएट हैं अब्दुल हमीद अदम मरहूम, तो उनकी गजल पेश कर रहा हूं।

आप समझ तो गए होंगे कि मैं समझाऊं। हाँ बोलो, मेरा ख्याल समझ गए। हाँ चलो अच्छी बात है। है हुस्न का फुसों भी इलाज फिसुर्दगी, रुख से नकाब उठा कि तबीयत उदास है। हुस्न वाले को कहा जा रहा है कि ये इलाज है फसुर्दगी का, बेचारगी का, बीमारी का। बेचारगी बीमारी को नहीं कहते, लेकिन बेचारगी और कई तरह की होती है। हाँ उसका इलाज भी है इसमें।

0: you.
1: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
2: की हुआ
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
2: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-93
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
1: याद रखो 9077-9733
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तो आड़े नाल
3: हाँ जी हाँ

व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 डॉन स्टेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

जाने मन कोय, मनै सुरत होवे मन बुद्ध, मनै सगल पवन की सुध, मनै मोचो टाने खा, मनै जम कै साथ न जाय। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, मनै

वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान हितवार ना जोगी जान रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीक को साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक देखो आप।

नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अते वाह पवे समुंद न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरिया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिफती कह न अंत अंत न करना दे न अंत अंत न वे

ना पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लैले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार, ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाएक आखन पाए, ओ जाने

नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध औरा साध संजोग वंजोग दोए कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे।

अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान बाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान बाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ती प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रवाने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण कुकुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वमुख प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरद करदा अधो उर्द अर्दंग अगा उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेदी अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय हैं थलय हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अवेश हैं प्रियंग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाते नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्वतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्वदृसंग नमो सर्वोत्कृष्ट नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमात्र मान देव अभेद आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपनकाल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख नराग जात्र तात्र दिशा विशा हुए फैलो नराग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्व हंता सर्व तेयन पे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार महिमा अपार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास

कालान कान अनुभूत अंग अभावंगत में तो पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष आदिष्टे तरम सर्वां परनांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभेज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभेज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत कर्ण के राजम प्रवाह के धर्म तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानिय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलामे सली खुदामे गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओम आदरूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिभादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंद है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर्क नासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਲ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਨੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਗਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ।

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनभव अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आदि कथनी।

0: नहात फिरो लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सबे तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरियास तुझो करियो रच्छा राख लो मोय राख नहारे साहेब संत सहाय प्यारे

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरत निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जा को पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूड किछ पेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, नंकार कार चिंत नहीं पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी, कहो फू राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, दिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

शिव चले स्वामी और क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए तिवे चले, जिन नाम मार्ग पावे कर कृपा, जिन नाम लाए से हर हर सदा तिहावे, जिसनु

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंदिन हर

जैसी अगन उदो मैं तैसी वार माया, माया अगन सभी को जई करता खेल लचाया, जांत सपाना ता जमया परिवार तला पाया, लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया, कह नानक

जी ने फिर उदाहरणा दतिया कौन कौन दरिया हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे काबर परमेश्वर के नाम के नाल भगत कबीर जी प्रसिद्ध हुए जन्मां जन्मांतरा के बुरे कर्मां का लेखा ही पाड़ दिता निमित नाम दियो गुरु भी आया तो जब जन्म संकट नहीं आया सिमरन की बरकत के नाल ही नाम दियो ते परमेश्वर एक लुक हो गए जन रविदास राम रंग राता यो गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। ते भगत जी कहंदे मैं भी परमेश्वर के नाम विच ऐसा लीन होया कि नरकां दे विच आवागमन तो रहत हो गया। अज का वचन है ना कि बहुत जन्म बिछड़ी थी माधो ये जन्म तुम्हारे लिख है। संगत जी सिमरन के नाल इन प्रसिद्ध हो गया जिन्होंने छोटिया जातों वाला कह के भंडिया जाता सी चमार चमार किया जाता सी भगत जी कहते मैं मानता हाँ उन्होंने संगत की चाली शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एक शब्द है वह कहते मैं मानता हाँ कि मैं चमार हाँ नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग ऐ नगर वासीओ ऐ बनारस वासीओ तुसी मैनू चमार चमार कह के भंडदे हो मैं कबूल करदा हां कि मैं चमार हां नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग हृदय नाम गोबिंद गुण सारंग पर मेरे हिरदे विच परमेश्वर का नाम वस गया। ते परमेश्वर का नाम की करता है जी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे जा की छूत जगत को लागे ता पर तुहू धरै नीच हो ऊंच करे मेरा गोबिंद नीच हो ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। तुसी मैनू नीच नीच कह के भंडदे हो परमेश्वर का नाम वेखो सारे संसार दे विच उगा कर दिता नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग हृदय नाम गोबिंद गुण सारंग उदाहरणा दित्तियां सुरसरी सलल कृत बारनूरे संत जन करतनी पानंग। सुरसरी कहंदे आ जी गंगा नूं सलल कहंदे आ पानी नूं बारनी कहंदे आ शराब नूं। शराब भावें गंगा दे पानी तो भी बनाई जावे पर जिहड़े भगत जन ने संत जन ने उहदा पान नहीं करदे सेवन नहीं करदे। फिर उदाहरण दिंदे ने सुरसरी सलल कृत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग सुरा अपवित्र मत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग। कहंदे शराब बड़ी भैड़ी है बड़ी माड़ी है अपवित्र है पर जे इस शराब जो आपां गंगा दे जल विच मिला दईए गंगा विच मिला दईए ते जदों गंगा दे विच मिल जांदी है शराब फिर शराब शराब नहीं रहिंदी उह शराब भी गंगा दा ही रूप हो जांदी है। भावें तुसी मैनूं कह लो कि मैं छोटी जात दा हां नीवी जात दा हां जिवें शराब गंगा दे जल विच मिल के शराब नहीं रहिंदी इवें मैं परमेश्वर दा नाम जप जप के ते परमेश्वर दा ही रूप हो गया हां। हुण भगत रविदास दे अंदर ते वाहिगुरु जी दे विच कोई अंतर नहीं तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। वाहिगुरु जी ताडे विच ते मेरे विच हुण कोई भेद नहीं रह गया। संगत जी आओ जो अज सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने इस शब्द विच सिख्या दित्ती है सत्कारयोग गुरु सवारे भाई रणजीत सिंह जी उन्हां दी रसना तो

संगत जी ध्यान देना, साढ़े 600 साल पहला जदों छोटियां जातां वालियां मनुखां नूं कहा जांदा सी ये ढेड़ है, जदों ये कहा जांदा सी ये कूटन है, बड़े निंदनीय शब्द उन्हां लई वरते जांदे सन। उस समय धन गुरु अर्जन देव जी की परोपकार करदे आ, जदों भगत साहिबान की बाणी दर्ज करदे आ ते किन्ने सत्कार नाल लिखदे आ तनासरी भगत रविदास जी की बाणी, भगत रविदास जीओ की, किन्ना सत्कार दिता जी। उस समय रहिंदी दुनिया तक यह सत्कार कायम रहेगा। अगे मंगल आया एक ओंकार, वाहिगुरु जी एक ने, उन्हां दा पसारा सारे जगत विच है, सतगुर

0: संगत जी वैसे ते साडा मन मनदा नहीं क्योंकि मन जड़ा है यह चंचल ते चंचल दा काम की हुंदा है चल चल इत्थे भी रुकना अगे होर चल होर चल मन दा सुभाव ऐसा है पर जदों सतगुरु दे बचना नूं सुनींदा फिर मन मन जांदा जदों गुरबाणी दे बचना नूं सुनींदा ना जी मन मन जांदा कि ये काम सही आ जदों सतगुरु दे बचना नूं सुनो मन लो कि सतगुरु जी ने समझाया कि अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम मन में चाहुंदा कि हां साडे काम आना है केवल नाम ने जदों सतगुरु दी बाणी समझाउंदी है कि जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जी वास मन मन जांदा कि हां जे गुरु दी शरणी आए साडा जीवन फिटकार योग है त्रिग है लानत है बचना दे नाल गुरु साहब दे बचना नाल मन मन जांदा कि नशे नहीं करने नशे साडे जीवन वास्ते हानिकारक आ जदों सतगुरु दे बचन समझाउंदी आ कि बाबा होर खाना खुशी खवार जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार महाराज जी ताडे शब्दां नाल ताडे बचना ना मन मन जांदा कि हां ये नशे नहीं करने उतरा ते मन जिहड़ा है भड़कदा रहिंदा ते जे मन नूं संगत जी मनाउणा चाहुंदे आ ना फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लाइए महाराज दी बाणी दा सहज पाठ करिया करिए अगे बचन आना कि किवें सतगुरु नाल फिर गल्लां हुंदियां बचनी तोर मोर मन मन है ताडे बचना ना मन मन जांदा है कि काम क्रोध काया को गल है ज्यों कंचन सुहागा ढल है काम सैक्स क्रोध गुस्सा शरीर दा इवें नुकसान कर दिंदे आ जिवें संगत जी सोना उहदा नुकसान सुहागा करदा गुरु साहब दे बचना नाल एक एक बचन दे नाल गुरु साहब दे एक एक अखर दे नाल साडा मन मन जांदा कि महाराज जी जो कुछ भी तुसी कह रहे हो साडे भले विच कह रहे हो संगत जी वेखो गुरु साहब कहंदे आ कि नशियां दा सेवन नहीं करना मैं एक उदाहरण देवा कई वारी साडा जिहड़ा मन है मैं पहला दस्या है चंचल है नहीं मनदा ते संगत जी उदाहरणा ने साडे सामने अज समैक हैरोइन सिंथेटिक नशियां नाल किन्नियां मौतां हो रही ते गुरु साहब जी सानू की कहंदे आ कि नाम दा नशा करो आ संसारक नशे जिहड़े ने इह उतर जाण वाले ने इह फिक्के ने ते नाम दा रंग कदी उतरदा नहीं नाम दा नशी कदी उतरदा नहीं जे गुरु साहब दे बचना ते मन मन जावे बचनी तोर मोर मन मन है ते संगत जी संसार दे विचों नशे खत्म हो सकदे आ क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी ने कहा कि ए बिके रसे ने ए झूठे ने ए मनुख नूं खवार करन वाले ने ए छिन भंगर ने ये थोड़ा सुख देण वाले आ पर नाम दा नशा सिमरन दा नशा कदी उतरदा नहीं जन्म साखियां विच लिखिया जी कि भंग धतूरा सुरा पान उतर जाए प्रभात नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात नाम दा नशा कदी उतरदा नहीं बचनी तोर मालक जी ताडे बचना नाल मन मन जांदा जदों तुसी बोलदे हो ना गुरु ग्रंथ साहिब जी मन मन जांदा बचनी तोर मोर मन मन जन को पूर्ण दीजै जन अपने सेवक नू ए पूर्ण सिदक भरोसा दृढ़ता बख्शिश करो हाँ।
1: बल बल जाओ रमैया कारने
0: हो बल बल जाओ मैं सदके जाना वारने जाना कुर्बान जाना किदे कोलो रमैया कारने सोने राम तो सोने वाहिगुरु जी तो मालक जी मैं आप जी कोलो सदके जाना हां
1: कारण कावन अबोल
0: संगत जी ए तीन अखरां दे विच अज दे शब्द दा केंद्री भाव है कारण कवन अबोल सारा शब्द इसे दी व्याख्या करदा है मालक जी तुसी साडे नाल बोलदे क्यों नहीं की कारण हो गया साडे विच की खामी आ कि तुसी साडे नाल गल्लां नहीं करदे संगत जी अपने घरां वल झाती मारियो जेकर कोई आदमी पति पत्नी रुस जावे ते कारण लभीदा है कि कारण की बनिया पति कहंदा है पत्नी नूं तू गल क्यों नहीं करदी की कारण है पत्नी पुछदी है अपने पति नूं की कारण है हुण आपां अपने आप नूं पुछिए कारण कमन अबोल साडे विच की ऐब है की कमजोरियां ने कि परमेश्वर जी वाहिगुरु जी गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे नाल गल्लां नहीं करदे कारण कवन अबोल कोई ना कोई कारण ते होवेगा ना संगत जी कि अपने नाल परमेश्वर जी गल्लां नहीं कर रहा है मैं आप जी का ध्यान थोड़ा जिहा रहाओ वाले बंद ते दवाना चाहुंदा तां कि आपां नूं गल समझ आवे जिहड़ी अज सानूं बाणी समझा रही है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों हजूर साहब नंदेड़ पहुंचे महाराष्ट्र उन्होंने लंबी नजर दे नाल वेखिया कि हुण शरीर नूं संकोचन दा समां आ गया गुरसिखां नूं बुला के दस्या कि हुण संसार तों पियाना कर जाना सच्चे पातशाह तुसी संसार तों पियाना कर जाना है ते जे असी तुहाडे नाल गल्लां बातां करनियां होण फिर किवें करिए हां जी जे तुहाडा आ सरूप वेखणा होवे फिर किवें वेखिए जे तुहाडे नाल किसी विशे ते विचार करनी होवे फिर किवें करिए अज दा शब्द ध्यान विच रखियो कारण कवन अबोल गुरु साहब जी कहन लगे कि अज तो बाद गुरु होणगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुर ने वचन किया कि आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ महाराज जी तुसी कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु मन्नियो जे तुहाडे नाल गल्लां करनियां फिर किवें करिए जे तुहाडा सरूप वेखणा फिर किवें वेखिए जे तुहाडे नाल किसे विशे ते विचार करनी फिर किवें करिए सिख बड़े सियाने सन जिवें जिवें सिख सवाल करी जांदे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज तिवें तिवें जवाब दई जांदे ने ते भाई साहब भाई नंद लाल जी लिखी जांदे आ कारण कवन अबोल संगत जी पहला सवाल गुरु साहब जी जे तुहाडे नाल तुहाडा आ सरूप वेखना होवे फिर किवें वेखिए गुरु साहब जवाब दिंदे आ जी
1: जो सिख गुर दर्शन की चाहे दर्शन करे ग्रंथ जी आहे जिन्हों ये चाह है कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन करने आ वो फोटवा विच ना लभे किथे लभे वो आके गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन करे मेरे दर्शन होणगे
0: हुण संगत जी आपां आए आ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल सारियां ने मत्था टेकिया नमस्कार कीती आ कि सतगुरु जी दे सानू दर्शन हो गए आ दर्शन की ने आओ बाणी दी रोशनी विच समझन दा जतन करिए दर्शन की ने दर्शन ने जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी, बोलो जी। पाठ दीदार गुरबाणी दे पाठ दे दर्शन ही सतगुरु दे दर्शन आ। नेत्री सतगुरु पेखना सरवणी सुनना गुरु नाओ, नेत्रां दे नाल सतगुरु दी बाणी दे दर्शन करने, कन्नां दे नाल सतगुरु दी बाणी नूं सुनना। पहले सवाल दा जवाब जी, दूसरा सवाल सतगुरु जी, जे तुहाडे नाल गल्लां बातां करनियां आउण फिर किवें करिए। अज दा रहाओ वाला बंद कारण कमल अबोल, गुरु साहिब जी कहिंदे जो मम साथ चाहे कर बात, ग्रंथ जी पढ़े बिचारे साथ। जिहड़ा ये चाहुंदा है मैं गुरु गोबिंद सिंह नाल गल्लां करनियां, जां कह लो जिहड़ा चाहुंदा मैं अकाल पुरख नाल गल्लां करनियां, ओ की करे गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करे विचार विचार के। की करे जी? पाठ करे विचार विचार के। जो मुझ साथ चाहे कर बात, ग्रंथ जी पढ़े बिचारे साथ। अज संगत जी जिहड़े पिंडां विच ग्रंथी साहिबान आ ना, जिहड़े सियाणे आ ओह ते बड़े सत्कार नाल बाणी पढ़दे आ, पर कई थावां ते मैं वेखिया कि कई सिंह ऐसे पाठ करदे आ जिवें मजबूरी होवे, ना करन वाले नूं कोई रस ते ना सुन वाले नूं कोई रस। गुरु साहिब जी ने कहा सी कि जे मेरे नाल गल्लां करनियां फिर रुक जाया कर, सिखा दौड़िया ना कर, विचार के पाठ करिया कर। वेखो पंक्ति आई आ, सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार। सिखा रुक जा दौड़ ना, पहले सोच ते रुक, इहदा की अर्थ आ? तीन वारी शब्द आया सोच, दूजे का की अर्थ आ, तीजे का की अर्थ आ? जे विचारेगा तो मेरे नाल गल्लां होणगियां। संगत जी एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक पाठ जदों आपां विचार विचार के करदे आ ना, फिर गुरु साहिब नाल गल्लां होंदियां, फिर गुरु साहिब जी बोलदे आ, सानू समझाउंदे आ, गल्लां करदे आ। वेखो किन्ना सोहना बोलदे आ। मालक जी कहिंदे पारतरै रूप ना पेखे नेत्र, ऐ गुरु दे सिखा पराई स्त्री दा रूप मंदी निगाह नाल नहीं तकना। पारतरै रूप ना पेखे नेत्र, गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखमनी साहिब दे विच, करण ना सुने काहो की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की बासना, मन ते डरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा परस। गुरु साहिब दे बोलदे आ कि इंद्रियां ते कंट्रोल करो, गुरु साहिब दे बोलदे आ इंद्र नहीं बनना। की नहीं बनना जी? इंद्र नहीं बनना। इंद्र की आ? जिहड़ा अपनियां इंद्रियां दे कंट्रोल विच चलदा। गुरु दे सिख ने बनना इंद्रजीत, इंद्रियां ते जित पा लैनी आ। कन्ना नाल पराई निंदिया नहीं सुननी, अखा नाल पराया रूप नहीं वेखना, मूंह दे नाल किसे भी निंदिया नहीं करनी, हत्थां दे किसे नाल बुरा नहीं करना। सच्चे पातशाह जो तुसी सिख्या दे रहे हो, कोई ऐसे सिख मिलदे भी आ? हां जी मिलदे भी आ जी, धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी वर्गे, जिन्हां ने अपनियां इंद्रियां ते कंट्रोल कर लिया, जिहड़े पराई निंदिया नहीं सुनदे, सारा जीवन गुरु की सेवा दे विच ला दिता। अज दा शब्द है जी कारण कवन अबोल। आपां अपने अंदर झाती मारनी है, साडे विच कित्थे ऐब रह गया, कित्थे गुनाह रह गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने दूजा जवाब दिता कि जो मुझ साथ चाहे कर बात, ग्रंथ जी पढ़े बिचारे साथ, जो मुझ बचन सुनन की चाहे, ग्रंथ विचार सुनो चित लाए। ते अंत विच कहंदे आ

संगत जी गुरबाणी किन्ना डूंगा लैके जांदी आ। अज संगत जी अपने जन्मां दी जदों गल चलदी आ ते गुरु अर्जन देव महाराज जी समझाउंदे आ कि हो आया दूरों चल कै मैं तक्की तो सरनाए जीओ मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जीओ। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन इन्नी सुंदर व्याख्या कर दे कहंदे जदों ये शब्द पढ़िया जांदा ते आपां सोचदे आं कि आपां कोई 5 किलोमीटर तो आया कोई 50 तो कोई 100 कोई 1000 कोई 5000। संगत जी ये दूरी वह दूरी नहीं है जिदे बारे ये बचन आया कि हाँ आया दूरों चल के। ये दूरी केड़ी है? ये दूरी वह दूरी है जिहड़ी असी वख वख जन्मां नूं भटक के आ मनुखा देही प्राप्त कीती आ। किन्ने जन्म भटके हां गुरु ग्रंथ साहब जी खोल के दस्यो ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने समझाया कि कई जन्म सैल गिर करिया। ऐ मनुख तू कई जन्म सैल बनिया पत्थर बनिया। आपा कई बारी पहाड़ां ते गए होवांगे जी कदी पत्थरां नूं वेख के मन विच विचार आया कि आपा पत्थर भी बने होवांगे? नहीं आया होना ना जी। अज का शब्द ध्यान में रखियो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो कई जन्म पत्थरों में लंघ गए। आ गुरु ग्रंथ साहब जी बोलते पे आ जी फिर हो आया दूरों चल के पत्थरों तो गां लंघे ते कई जन्म शाख कर उपाया। ऐ मनुख तो कई जन्म शखावां बनिया बूटे बनिया ब्रिश बनिया दरख्त बनिया। हुण आपां कदी इह सोचिया कि आपां बूटे भी बने आ जी रुख भी बने आ? किन्नी वारी रुखां नूं वेखिया। आपणे भारत दा ही एक विज्ञानी आ उहदा नाम है सर जगदीश चंद्र बोस बंगाल दा रहण वाला। इन्हें रुखां ते रिसर्च कीती दस्या कि इन्हां विच औरतां भी हुंदियां ने इन्हां विच मर्द भी हुंदे आ रुखां दे विच जान भी हुंदी आ। रुख गर्मी नूं भी महसूस करदे आ रुख सर्दी नूं भी महसूस करदे आ। दरख्त संगत जी जेकर कोई मनुख खुशी दे नाल बैठा दरख्त उहनूं वेख के खिड़ जांदा। जेकर कोई गमी बैठा गमगीन बैठा तो दरख्त उन्हूं वेख के मुरझा जांदा। सर जगदीश चंद्र बोस साडे देश दा विज्ञानी। विज्ञानियां ने अज दस्या धन गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी संगत जी किन्ने सौ साल पहलां दी दसदी आ रही है। हो आया दूरों चल कै मैं तक्की तो सरनाए जीओ मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जीओ। कई जन्म पत्थर बने कई जन्म शिखावां बूटे ब्रिश बने उतो बाद कई जन्म पै कीट पतंगा कई जन्म गज मीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो। कई जन्म कीड़ियां विच लंघ गए पतंगियां विच लंघ गए बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखा है। मालक जी मैं एक जन्म का बिछड़िया होया नहीं हां किन्ने जन्मां तो भटकण तो बाद आ मनुखा देही मिली आ। कादे लई मिली आ? गुरु ग्रंथ साहब जी ने समझाया कि भई प्राप्त मानुख बिहुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते नाकाम मिल साध संगत भज केवल नाम। आओ गुरु ग्रंथ साहब ना गल्ला करिए कारण कवन बोल
सच्चे पातशाह जी का शब्द इथो शुरू होया सी कि साडे वर्गा दीन कोई नहीं, ताडे वर्गा दयालु कोई नहीं। संगत जी वेखो अपने अंदर झाती मार के, साडी दीनता दी हद है ना, असी पत्थर जोनी विच रब नू पा सके, ना असी आ दरख्तां वाली जोनी विच रब नू पा सके। आ हुण अगला जन्म मिलिया कीड़े पतंगियां दा, मछियां दा, हाथियां दा, ना उहदे विच रब नू पा सके। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, उन्हां नू भटकण तों बाद आ मनुखा देही मिली, ते जे मनुखा देही भी असफल रही, वाहिगुरू दा मिलाप ना हो सकिया, फिर संगत जी कोई प्राप्ति नहीं साडी होई। गुरु ग्रंथ साहिब जी बोलदे आ कि गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। इस देही नू देवी देवते लोचदे आ, इस देही दे नाल परमेश्वर दा सिमरन करो। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मनुखा जन्म का लाहा की है जी, है लाहा है वाह।

जिसने परमेश्वर दा लड़ पकड़ लिया उन्हों संसार दी मुथादी नहीं रहिंदी ना उन्हों वहमां भरमां दी ज्योतिषियां दी टूने टामना दी गोरख धंधियां दी किसे दी मुथादी नहीं रहिंदी। गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसे मन आए। गुरबाणी सानू संसार विच चानन दिंदी है, रोशनी दिंदी है। आओ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लगीए, मालक दी बाणी दा सहज पाठ करिया करिए, नित नाम नित नियम करिया करिए। जे अखंड पाठ साहिब करवाउंदे आ ते फिर सुनिया करिए। सुनना जरूरी आ। सुनिया सरा गुणा के गा, सुनिया शेख पीर पातशाह, सुनिया अंधे पावे, सुनिया हाथ होवे असगा, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। इन्हां विचारां आप जी ने प्रवान करनियां जी। गुर शब्द दी विचार करदियां होईयां बेशुमार भुल्लां दी खिमा। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, धन गुरु रामदास महाराज जी दा कोटान कोट शुकर। सारियां संगतां दा धन्नवाद। आओ आखरी पंक्तियां गुरु सवारियां दी रसना तो सरवण करिए।

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास, जो शास्त्रों से, परंपरागत कथाओं से आपके जीवन में भक्ति के बीज अंकुरित करने का एक छोटा सा प्रयास करता है। आज है सोमवार, देवों के देव महादेव का दिन, और हमारे पुण्य दर्शन में चल रही है भगवान श्री जगन्नाथ जी की कथाओं की श्रृंखला। तो हमारे लिए ये सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। एक ही जगह, एक ही क्षण, एक दूसरे के आराध्य की कथा, उसका श्रवण करने का अवसर जो प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवतम महापुराण में भगवान शिव के विषय में प्रसिद्ध वचन आता है, वैष्णव नाम यथा शंभु, अर्थात सभी वैष्णवों में भगवान शंभु श्रेष्ठ हैं। इसीलिए भगवान शिव हमें क्या शिक्षा

शिक्षा देते हैं। कैसे वो सच्ची भक्ति, विनम्रता और समर्पण के भाव प्रकट करते हैं, इसका सुंदर प्रमाण श्री जगन्नाथपुरी धाम में देखने को मिलता है, जिसका श्रवण के माध्यम से हम करेंगे आज पुण्य दर्शन इस छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। तो भगवान श्री जगन्नाथ और भगवान शिव यानी जगन्नाथ पुरी धाम के लोकनाथ महादेव की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। भगवान श्री जगन्नाथ और भगवान शिव का संबंध अत्यंत प्रेम, सेवा और भक्ति का है। दोनों ही एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। अनेक लोग शिव और विष्णु को अलग अलग मानते हैं, किंतु शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान शिव स्वयं भगवान विष्णु के महानतम भक्त हैं। इसी सत्य का सबसे सुंदर प्रमाण श्री जगन्नाथपुरी धाम में देखने को मिलता है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी की स्थापना नीलाचल धाम में करवाई, तब उस दिव्य अवसर पर ब्रह्मा जी सहित सभी देवता भगवान के दर्शन के लिए पुरी पहुंचे। भगवान शिव भी माता पार्वती के साथ अपने आराध्य प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए। भगवान शिव ने जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी के अलौकिक स्वरूप का दर्शन किया, वे प्रेम और भक्ति से अभिभूत हो गए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे और वे प्रभु के चरणों में स्तुति करने लगे। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने महादेव को अपने समीप बुलाया और अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, हे महादेव, हे देवों के देव, आप मेरे अत्यंत प्रिय हैं। आपकी भक्ति से मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस नीलाचल धाम में निवास करें, इस पवित्र क्षेत्र की रक्षा करें, ताकि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए यहां आए उसे आपकी भी कृपा प्राप्त हो। भगवान शिव ने इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य माना। उन्होंने प्रभु की आज्ञा को स्वीकार किया और कहा कि प्रभु, आपके धाम की सेवा से बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। मैं सदैव भक्तों की रक्षा करूंगा और इस धाम की मर्यादा बनाए रखूंगा। तब से भगवान शिव पुरी धाम में लोकनाथ महादेव के रूप में क्षेत्रपाल अर्थात धाम के रक्षक बनकर विराजमान हैं। आज भी भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी से पहले क्या खास है लोकनाथ महादेव के शिवलिंग की, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया, सुख गाते।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो श्री जगन्नाथ पुरी धाम के क्षेत्रपाल यानी धाम के रक्षक के रूप में विराजमान हैं भगवान शिव, लोकनाथ महादेव के रूप में। आज भी जगन्नाथ पुरी में स्थित लोकनाथ महादेव मंदिर लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। भक्त जगन्नाथ जी के दर्शन से पूर्व लोकनाथ महादेव के दर्शन करने, उनकी अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त करने वहां जाते हैं। कहा जाता है कि यहां पर लोकनाथ महादेव का शिवलिंग वर्ष भर जल में डूबा रहता है। केवल महाशिवरात्रि के अवसर पर ही भक्तों को शिवलिंग का पूर्ण दर्शन प्राप्त होता है। यह दृश्य भक्तों के लिए अत्यंत दुर्लभ और पवित्र माना जाता है। जैसे उत्तर भारत में कावड़ लेकर जाते हैं ना, उड़ीसा क्षेत्र में भी भोले के भक्त कावड़ लेकर जाते हैं, जिन्हें बोल बम भक्त भी कहा जाता है। ये भक्त कटक में महानदी काठजोड़ी नदी के संगम गड़गड़िया घाट से पवित्र जल भरकर अपने अपने क्षेत्रों के शिवलिंग पर जाते हैं। पुरी धाम में भगवान शिव केवल लोकनाथ महादेव के रूप में ही नहीं, बल्कि बिल्वेश्वर महादेव, जेम्सवर महादेव, कपाल मोचन महादेव जैसे अनेक स्वरूपों में भी विराजमान हैं। यह दर्शाता है कि भगवान शिव स्वयं श्री जगन्नाथ धाम की महिमा को बढ़ाने और भगवान की सेवा करने के लिए वहां निवास करते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण में भगवान शिव को वैष्णवा नाम यथा शंभु, अर्थात सभी वैष्णवों में भगवान शंभु श्रेष्ठ हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। इसीलिए भगवान शिव हमें यह शिक्षा देते हैं कि भगवान की सच्ची भक्ति, विनम्रता, सेवा और समर्पण करना चाहिए। देखिए, हम भगवान को तो मानते हैं किंतु भगवान की नहीं मानते। हम शिव को तो मानते हैं पर शिव की नहीं मानते। अब जब स्वयं शिव महादेव भगवान जगन्नाथ जी की आराधना करने को बोल रहे हैं, उनकी सेवा करने को कह रहे हैं, भक्ति करने को कह रहे हैं, तो हमें भी उनके आशीर्वाद के साथ भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, भगवान की सेवा ही जीवन का सर्वोच्च सौभाग्य है। स्वयं देवों के देव महादेव भी अपने आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण की सेवा को अपना परम धर्म मानते हैं। इसीलिए यदि हम भी भगवान की शरण में जाकर उनके भक्तों की सेवा करें तो हमारा जीवन भी सफल और मंगलमय हो सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव सत्य है, सुंदर है। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, फाड़े करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: तुहाडा प्रभाव छोटे मौकियां विच देखा जा सकता है अते जीवन बदलन वाले मौकियां विच भी ए रोमांचक अते विहारक संपूर्ण अते उत्साहपूर्ण हो सकदा है। ए उन्ना ही निखड़वां हो सकदा है जिन्ने की तुसी हो। तां तुहाडे अपने तरीके नाल हर रोज तुहाडी चिज़म दी योग्यता किसी दी जिंदगी नूं बेहतरी लई बदल सकदी है। अते तुहाडी वी सर्टिफिकेट तो लैके डिग्री तक इत्थे तुहाडे लई कोई ना कोई सही चिज़म योग्यता है। हुणे अर्जी देण लई चिज़म दी खोज करो। चिज़म बेहतरी लई RTO 0260।
0: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी तुहाडे ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
3: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा solutions.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
4: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।
5: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4-5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300151616 quicksignage.com.au।

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने। बंसल लॉयर्स, तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: पुलिस बूज बस के लिए बाएं मुड़े। सांस की जांच उपकरणों वाली पुलिस मोटरसाइकिलों के लिए दाएं मुड़े। जीवन के लिए खतरनाक दुर्घटना की स्थिति में सीधे आगे जाना जारी रखें।
2: आपकी छुट्टी कैसे खत्म होती है यह आप पर निर्भर है। यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो यह गलत बात है। TAC की ओर से एक संदेश।
3: किथे वज गई तेरी गड्डी?
4: गड्डी तां ठीक होजू पर इंश्योरेंस वालियां नूं लीगल वालियां नूं इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें?
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, 11

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: तुहाडा प्रभाव छोटे मौकियां विच देखा जा सकता है अते जीवन बदलन वाले मौकियां विच भी ए रोमांचक अते विहारक संपूर्ण अते उत्साहपूर्ण हो सकदा है। ए उन्ना ही निखड़वा हो सकदा है जिन्ने की तुसी हो। तां तुहाडे अपने तरीके नाल हर रोज तुहाडी चिज़म दी योग्यता किसी दी जिंदगी नूं बेहतरी लई बदल सकदी है। अते तुहाडी भी सर्टिफिकेट तो लैके डिग्री तक इत्थे तुहाडे लई कोई ना कोई सही चिज़म योग्यता है। हुणे अर्जी देण लई चिज़म दी खोज करो। चिज़म बेहतरी लई RTO 0260।
0: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी तुहाडे ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
3: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596, गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
4: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले। जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।
5: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4-5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपने बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-151616, quicksignage.com.au।
6: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
7: की होया,
6: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
7: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
6: या 90-77-97-33
7: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
6: याद रखो 9077-9733
7: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
6: हर कदम तुहाडे नाल।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
8: पुलिस गूस बस के लिए बाएं मुड़े। सांस की जांच उपकरणों वाली पुलिस मोटरसाइकिलों के लिए दाएं मुड़े। जीवन के लिए खतरनाक दुर्घटना की स्थिति में सीधे आगे जाना जारी रखें।
9: आपकी छुट्टी कैसे खत्म होती है यह आप पर निर्भर है। यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो यह गलत बात है। TAC की ओर से एक संदेश।
2: ता किथे वज गई तेरी गड्डी?
10: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें।
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, 11 हॉल।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।